90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छे के कोई पण कार्य एकला हाथे सफल पार थतुं नथी, एटले के कोई नो साथ अथवा टेको होय ज छे। परंतु हमेशा एवी व्याख्या करी शकाय के आजूबाजू घणा बधा

0: रेडियो बालनपुर 90.4 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आम आपने मानता रहीसु गीता अमृत सिंपल अने सरल भाषा में गीता नु रसपान आपने आ कार्यक्रम केवो लाग्यो ए अचूकपणे अमारा फेसबुक पेज 90.4 एफएम रेडियो बालनपुर पर प्रतिभाव आपवानु चूकता नहीं आवी ज रीते मळता रहीसु तमे सांभळता रहो 90.4 एफएम रेडियो बालनपुर
1: गीतामृतम गीतामृतम ना आ प्रसारण मा अपने 12 अध्याय पूरा करी 13मो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नो विचार करता अध्याय नी अंदर अत्यारे विहरण करी रहा छे। सरल भाषा मा भक्ति नी वात करी सरस रीते अपने ए समझाव्यू अने हवे आ जगत ना स्वरूप ने जुदी रीते ज्ञान मार्ग थी कृष्ण समझावी रहा छे। हमने शुरुआत में कहू के आ शरीर जे छे एने क्षेत्र समझ अने एनो जानकार होय एने क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एम बे तत्वों थी जगत बनेलू छे। अपने ए पण जोयु छे पहला के जगत नो विचार करती वक्ते हमेशा बे तत्वोनी वात लगभग दरेक दर्शने जुदी जुदी रीते पण करी छे। अहींया पण ए वात करी अने आपणे त्यांथी आगळ वध्या छीए के शरीर तो क्षेत्र छे अने आत्मा जे छे के जीवात्मा जे छे ए क्षेत्रज्ञ छे। कहेवानो भावार तो हजु ए छे के परम परमेश्वर के परमात्मा के परम चैतन्य जेने आपणे कहीए ए अने जीवात्मा ए अंश अंशी थी जोड़ायेला छे अंशी ज छे अंश ज छे। ए वात आपणे आगळ कही छे अने क्यारे प्राप्त थाय तो एमणे कह्युं तो के इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना आ एना विकार छे अने एनी सामे जे गुणों छे एनी वात करती वक्ते अपने जे वात करे छे एमा अपने आवी गया छीए। ज्ञान प्राप्तिना जे विभिन्न साधनों छे ए साधनों अने ए साधनों कर्या पछी आसक्तिनो सदंतर अभाव कोई पण वस्तुनी अंदर ज्ञानमां पण आसक्ति ना होय आसक्तिनो सदंतर अभाव ए अपेक्षित छे एनी वात करी छे। कारण के आपणे 8मा श्लोकमां जोयुं तुं के इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रियना अर्थो तरफ विरति प्राप्त थई जवी आपणे सारी रीते समझ्या छीए एटले अत्यारे एने विगते हुं समजावतो नथी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आ बधुं आवे छे ने जाय छे एनी तरफ अनुदर्शनम एनी अंदर ने ए समझ्या सिवाय ए दोषरूप बने ज्ञान प्राप्ति मां एनु दर्शन करता रहेवू। एनथी आगळ जे वात करे छे ए आ अनासक्तिनी वात करे छे। अनासक्तिनी वात गीतामां अनेक जग्याए अने अनेक रीते कहेवायेली छे।

0: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
1: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो तारीख 14 थी 23 ऑगस्ट सवारे 11 थी रात्रे 10 वागे राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहानारा बागनी पासे पालनपुर।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
3: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
3: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
3: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
3: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण।

0: यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाशगंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
1: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
1: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध है। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
1: जी,
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी,
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोता, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे

0: में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
3: वाह, क्या बात है
4: मैम।
3: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
1: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: मैंने भी देखा है।
1: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
1: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
3: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
1: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
3: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
3: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।

0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम,
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए, अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल।

कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी, शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी,
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

पक्का पालनपुरी न्यू ओला किटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
1: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो तारीख 14 थी 23 ऑगस्ट सवारे 11 थी रात्रे 10 वागे राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहानारा बागनी पासे पालनपुर।
2: अभी अलविदा मत कहो।

0: बंधन
1: आ रक्षा बंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित करयो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहेनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो तारीख 14-23 ऑगस्ट सवारे 11-10 वागे राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहानारा बागनी पासे पालनपुर।

0: और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उम्र कैद ले लेने की? अच्छा भला था गले में फंदा डाल लिया।
1: क्यों जी, क्या खराबी है हमारी लड़की में?
0: आपकी लड़की इतनी बड़ी, वैसे आपकी उम्र क्या?
2: लक साबुन का कमाल है ये, और क्या।
1: अच्छा वो आपका
0: हो गया।
1: वैसे वो गले में फंदा डालने की क्या बात कर रहे थे? जब माला डालनी होती है तब क्यों कछुए की तरह गर्दन आगे कर देते?
0: वो क्या है कि इस कछुए को मालूम नहीं था ना कि इस गांव में आप भी हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपका नाम?
1: बर्बादी।
2: क्या बात है आदि।
0: शादी बर्बादी होती है।
1: अच्छा तुम नहीं सही, लेकिन यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे लिए हंसते हंसते बर्बाद हो
0: जाएंगे।
1: करेला बैठ के चबाना, तुम और तुम्हारे चेले।
2: आदि क्या कहेगी यार?
3: मुंह मत लगाना आदि, कड़वी चीज है।

0: असल में मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था।
1: मेरे पिताजी भी तुम्ही को ढूंढ रहे हैं।
0: अरे बाप रे, अरे भाग बे। हस्ती अच्छा है। वैसे मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बड़ी सीधी सादी और भोली भाली होती है, शर्मीली।
1: काकी इधर आओ।
0: काकी,
1: ये सीधी भी है और शर्मीली भी।
0: अरे
2: हाँ बेटा।
0: नमस्कार।

0: तो फिर वक्त आपको यही सिखाता है कि आप चाहे दिल के हाथों कितने ही मजबूर हो, पर सही वक्त पर सही बात सही इंसान से सही लफ्जों में या फिर सही आपकी दिल की फीलिंग से कही जाए तो आपको अपना प्यार मिल जाता है। आज की कहानी इंतजार में जो हमारे किरदार है उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, खुशबू और सुमित। खुशबू और सुमित की ये कहानी है जिसमें इंतजार आता है, पर इंतजार से पहले एक लंबी ट्रैवलिंग की बात भी आती है। चलिए इस छोटे से गाने के ब्रेक के बाद मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, यानी आरजे दिलबर के साथ सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 रेडियो पालनपुर पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए।
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाई नी कड़ाई पर राखड़ी नहीं, पण गुजरात नी बहनों ना स्वावलंबन ना स्नेह थी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारों मा आवतो भाई बहन ना संबंध नो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
2: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड, महिला अने बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित करयो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्य ना तमाम जिल्लाओनी बहनों ना स्वावलंबन ने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओं ना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो तारीख 14 थी 23 ऑगस्ट सवारे 11 थी रात्रे 10 वागे राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहानारा बागनी पासे पालनपुर।

घड़ी कभी रुकी हुई नहीं होती है जब वो टिक टिक आवाज करती है, पर हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसे लम्हे हमारे आसपास जुड़ जाते हैं कि तब हमें लगता है कि ये जो टिक टिक आवाज है वो शायद हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि वक्त रुक गया है। वैसे देखा जाए तो वक्त आगे बढ़ रहा होता है, पर हमारे लिए वो वक्त रुक जाता है, उसी को हम इंतजार कहते हैं। दोस्तों, सुमित और खुशबू, सुमित एक बड़ी लंबी यानी 6-7 घंटे की ट्रैवलिंग पर निकलता है अपने काम से। कुछ 1.5 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा गांव आता है और गांव के बाहर दोपहर का वक्त होता है, करीब 3-4 बजे, और एक कह सकते हैं ना कि टीचर लग रही एक लड़की को ये सुमित को वहां पर बस स्टॉप के आगे खड़े हुए देखना, ये कोई संजोग था या फिर खुदा ही जाने कि उनको मिलाने के लिए एक पूरी

साजिश थी, क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूं कि अगर मोहब्बत शिद्दत से होती है, दिल से होती है, तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए जुड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और सुमित ने देखा कि ये टीचर लग रही है, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा झोला था और ऐसे कुछ मतलब हाथ में पेन थी, कुछ सोच रही थी, मोबाइल भी था, कुछ करीब 2 साल पहले की बात है। तो उसने गाड़ी को आराम से धीरे से करके, एकदम से तो किसी को नहीं पूछ सकते कि आपको लिफ्ट चाहिए, तो उसने थोड़ा सा आगे जाके एक पानी का मटका रखा हुआ था वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी। वो नीचे उतरा, थोड़ा सा ऐसे अपनी अंगड़ाई ली और फिर एक लोटा भर के पानी पिया, मुंह को साफ किया और फिर मुस्कुराते हुए उसने ऐसे दरवाज़ा खोलने की जगह पर वहाँ पर खड़े होकर उस लड़की की ओर देखा। लड़की भी उस वक्त अकेली थी, थोड़े से दूर एक ककड़ी बेचने वाली एक औरत बैठी हुई थी और वो भी नींद के वजह से थोड़ा सा ऐसे उदास, गर्मी की वजह से थी, और ये लड़की तब उस तरफ देखती है। तब सुमित की और उसकी दोनों की आंखें मिलती है और सुमित ऐसे इशारों से पूछता है कि आना है, आपको कहीं जाना है। वो लड़की थोड़ी सी आंखों से क्वेश्चन मार्क की तरह अपने मुंह पे सारे रिस्पॉन्स, सारे वो कहते हैं ना हम, कि एकदम से कोई अचानक आपसे कोई चीज़ पूछे तो आप एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, वैसे वो रिप्लाई करती है। तब वापस सुमित पूछना है कि आपको लिफ्ट चाहिए, इतनी दोपहर में शायद यहाँ पे मैंने कोई बस देखी नहीं है, अगर आप चाहे तो मैं आगे 4 घंटे तक जाने वाला हूँ, आपको रास्ते में कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूंगा। लड़की बोली कि वैसे तो बस आ जानी चाहिए पर आज आई नहीं है, तो शायद लेट भी हो सकती है और मुझे 2.5 घंटे के बाद जो सिटी आता है वहाँ पे उससे पहले निकलना है, वहाँ पे जाना है। तो फिर सुमित ने कहा कि आइए अगर आपको एतराज़ नहीं है तो। और वो ककड़ी बेचने वाली आंटी भी बोलती हाँ बेटा चले जाओ, क्योंकि अब तक अगर बस नहीं आई तो फिर इस रूट पर नहीं आएगी। खुशबू आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही खुशबू गाड़ी में बैठती है, ये नाम हमें पहले से पता है, इसीलिए सुमित को तो पता नहीं था कि ये नाम उसका खुशबू था, पर वाकई वो जैसे बैठती है उसके वो फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम बोले या फिर टैल्कम पाउडर, एक बेहद दिल को खुशनुमा कर देने वाली खुशबू पूरे उसकी गाड़ी में फैल जाती है और सुमित बाग बाह हो जाता है। अब क्या हुआ होगा ये जानेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज।

सुमित ने जैसे सेल स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ी, खुशबू की खुशबू और ही ज्यादा, पूरे ये एटमोसफियर को पूरी गाड़ी के अंदर बेहद ही खुशनुमा और बढ़िया सा बना रही थी। सुमित ने पूछा कि आपको म्यूजिक में प्ले करूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, आप कर लीजिए। और फिर सुमित ने गाना लगाया, गाना वो भी ऐसा गाना जिसे पुराने, मतलब ये कह सकते हैं ना कि जो फेवरेट गाने होते हैं, जो सालों साल तक लोगों को पसंद आते हैं, वैसा गाना लगाया। गाना भी मतलब इतना बेहतरीन गाना था, वहीदा रहमान जी पे फिल्माया गया और देवानंद साहब की पिक्चर का। और ये गाने के साथ में थोड़ी देर के बाद में खुशबू भी गुनगुनाने लगती है। खुशबू की आवाज सुनकर सुमित को लगता है कि क्या बेहतरीन सुरीली आवाज, क्या इतनी अच्छी लड़की, खूबसूरत है, और इस गांव में क्यों थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और खुशबू को लगता है कि आह, ये मैंने अचानक से गाना शुरू कर लिया, ये सही नहीं है। तो वो बोली कि सॉरी सॉरी, मैंने गाने लगी, आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। सुमित ने कहा कि नहीं, आपकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली है, मैं ये पुराने गाने की रिकॉर्ड की जगह आपके मुँह से सुनना चाहूँगा। और इसी बात पर दोनों में हंसी आ गई, फिर बातचीत शुरू हुई। बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम खुशबू है। खुशबू यहाँ पर टीचर के तौर पर नहीं आती, एक सोशल वर्कर के तौर पर आती है। उसकी एक एनजीओ है जो यहाँ पर बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए कुछ काम करती है। पर ओवरऑल तो कुछ ऐसा ही था, ये सोचा था सुमित ने। और सुमित ने कहा कि आप हर रोज आती? उसने कहा नहीं, मुझे 10 या 15 दिन में एक दो बार आना होता है, और जब भी प्रोजेक्ट होता है, जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है या फिर सैटरडे होता है तो मैं आती हूँ। ये सारी बातचीतों के अंदर अंदर दोनों के बीच में, क्योंकि 2.5 घंटे का रास्ता था, तो ये बातचीत ही उनके बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बना रही थी। कुछ सुमित ने अपनी हल्की सी बातें ऑफिस की, अपने वर्क की बताई, कुछ हंसी और ठहाके हुए। इस दोनों में जैसे ऐसा लग रहा था कि सुमित को कि वो पहले कुछ सालों से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा लग रहा था। और खुशबू ने भी बहुत सारी बातें बताई। एक खुशबू ने बात बताई थी कि जब वो पहली बार साइकिल सीखने के लिए अपने भाई को लेकर बाहर गई थी और फिर गिर पड़ी थी, और आके उसने अपने दादा को ही बताया था, अपने पापा मम्मी को नहीं बताया था क्योंकि चोट ज़्यादा थी और बिना पूछे वो गई थी। मतलब ऐसी चीज़ें कौन शेयर करता है? तो वो ही करता है कि जो दिल से कुछ किसी के साथ कनेक्शन बना पाता है, और यही कनेक्शन की शुरुआत थी। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि मुसाफिर में मिले किसी व्यक्ति के साथ आप कुछ अपनी अंदरूनी बातें जो शायद आपने किसी को नहीं बताई है, वो भी शेयर कर लें। यही तो दिल का रिश्ता होता है। जी हाँ, बातों को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए आरजे दिलबर को, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज़ 2.0 पर।

की दुकान पे जाके दोनों ही पूछते हैं कि कॉफी मिलेगी, और वो चाय वाला बोलता है कि सर और मैडम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये चाय की टपरी है, कॉफी नहीं है। फिर भी वो बोलता है कि नहीं नहीं रुकिए, मैंने कुछ दिन पहले एक गेस्ट के लिए यहाँ पे कॉफी रखी हुई थी जो आए दिन आते रहते हैं, तो आपको आज कॉफी तो मैं पिलाऊंगा, कोई बात नहीं आप बैठिए। 4 बजे ने आए, शाम के 4 साढ़े 4 बजे दोनों कॉफ़ी के लिए वो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था और प्लास्टिक की चेयर पे वो बैठते हैं, और उसी बैठने में सुमित का हाथ खुशबू के हाथ को छू जाता है। सुमित को लगता है कि एक बिजली सी कौन जाती है, और ऐसा ही खुशबू को भी, थोड़ा सा सहम जाती है पर फिर भी मुस्कुरा के बोलती है कि इट्स ओके, दोस्तों में ये होता रहता है। अब बात दोस्ती में आ गई है, बातें दोस्ती में आ गई है, और खुशबू सारे कामकाज के अलावा कुछ कविताएं भी लिखती थी, कविताएं पढ़ती भी थी, और एक बेहतरीन कविता वो उसको सुनाती है। कविता के अल्फाज तो सुमित बोला कि मैं उतना कविता के लिए याद या रट्टा कर सकूं ऐसा कुछ था नहीं, पर उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि खुशबू ये कहना चाहती थी कि साथ चाहे पल दो पल का हो, पर वो पल दो पल ऐसे लगने चाहिए कि पूरी उम्र जी लिया हो हमने। यानी आप पूरी उम्र की जिंदगी अगर पल दो पल में जी सके ऐसा आपको महसूस होता है, तो वो पल दो पल ही आपके जीवन के सबसे बढ़िया पल होते हैं, और वही प्यार का इजहार करते हैं। उस वक्त समझने में थोड़ी देर लग गई शायद सुमित को, सुमित को अच्छा तो लगा पर वो कविता से इतना जुड़ा नहीं था। उसने फिर एक फिल्मी गाना भी उस वक्त थोड़ा सा गुनगुनाया, पर वैसे उसकी आवाज में वो गाना इतना सूट नहीं होता था, पर खुशबू ने उसे दिल से उसको सराहा। बातें हुई, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लगी, छोटा सा एक वेफर का पैकेट लिया, वेफर की वो कुरकुराहट के बीच में भी, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे परिवार की बातें भी हुई जैसे लग रहा था कि दोनों डेट पे मिले हैं, पर एक दूसरे को पता ही नहीं था शायद। और 7-8 मिनट हो गए दोनों खड़े हुए, दोनों गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठते वक्त भी सुमित ने पहले जाके खुशबू के लिए दरवाजा खोला, उन्हें बिठाया। खुशबू ने भी बहुत ही ताव और चाव से वहां पे बैठा, जैसे लग रहा था कि उसका प्रेमी ही उसको अपनी मर्सिडीज में बिठाकर जैसे सपनों की दुनिया में सैर कराने ले जा रहा हो। ये सारी चीजें जब सुमित और खुशबू मुझे लिखकर भेज रहे थे, तब दोनों के अलग अलग मैसेजेस में मैंने कंबाइन किया तो चीजें मुझे एक मिली है, इसीलिए मेरे लिए ये कहानी बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

गाड़ी का पहिया तो चलता रहा, किलोमीटर्स चलते रहे, समय का चक्र भी चलता रहा, और 4 घंटे के सफर में 2.5 घंटे बीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब 15 मिनट बाकी थे शायद मुश्किल से, और खुशबू ने बताया कि अभी आगे वाले 10-12 मिनट के मोड़ पर आप मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ से मुझे टैक्सी मिल जाएगी या फिर ऑटो में कर लूँगी, वहाँ से 6 मिनट के अंतर पर मेरा घर है। सुमित ने कड़सी के लिए बोला कि मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, अब तो हम दोस्त हैं। फिर खुशबू ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि दोस्त है तो फिर फॉर्मेलिटी क्यों, हम इसी बात को आगे क्यों ऐसे मोड़ पर ले जा रहे कि जहाँ पर जाके शायद आपको या मुझे कुछ और सवाल के जवाब देने पड़े। और इसी बात पर दोनों पे चुप्पी साध गई। पता नहीं दिल की बात हुई नहीं हुई, कॉन्टैक्ट नंबर लेना था नहीं लेना था, मोबाइल दोनों के पास था, कुछ नहीं पूछा, कहाँ पे रहते हैं, 5 मिनट के बाद में कौन सी सोसाइटी है, ये कुछ नहीं पूछा सुमित ने, ना ही खुशबू ने बताया। आराम से वहाँ पर आई खुशबू, वहाँ से नीचे उतरी और उसने अपनी बैग से निकाल कर एक गुलाब की पंखुड़िया जो एक छोटे से पेपर रुमाल में उसने रखी हुई थी, उसने कहा कि आज बच्चे मेरे लिए एक गुलाब लेके आए थे पर पंखुड़िया ये गर्मी की वजह से गिर गई है, पर मैंने उसको संभाल के रखा है, मैं आपको कुछ और नहीं पर ये एक भेंट देना चाहूँगी एक दोस्त को। सुमित उसे देखता रहा, 2 मिनट के बाद उसने वो पेपर नैपकिन वाली गुलाब की पंखुड़ियों को अपने हाथ में लिया और खुशबू एक स्माइल देकर वहाँ से निकली। थोड़ी कॉर्नर पर ऑटो खड़ी थी उसमें बैठी, उसने पीछे मुड़कर भी देखा, सुमित ने कांच से देखकर उसको हाथ से बाय बाय कहा और कोई लफ्ज़ की एक दूसरे के पास कोई आवाजाही नहीं हुई और खुशबू की ऑटो टिकती रही तब तक वो खड़ा रहा, फिर वो भी निकल गया अपनी मंजिल पर। वो पेपर नैपकिन में गुलाब की पंखुड़िया थी, उसने वो अपनी रोज की जो बातें लिखता था उसकी डायरी जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर थे उसमें रखकर वो पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, काम हो चुका, डिनर हो चुका, 4-5 दिन भी निकल गए, पर मन में सुमित के लगता था कि कुछ रह गया है, कुछ वो मुसाफरी में मेरा छूट गया है।

कैसे मिलेगा, ना कॉन्टेक्ट नंबर, ना पूरा नाम, ना सोसाइटी, बस एक ही था कि वो वहाँ पे रुकी थी। और ये भी नहीं पता था कि खुशबू कौन से दिन जाती थी, क्योंकि उसने बताया था कि वो डिसाइडेड दिन नहीं होता था, वो जब भी उसका दिल करता था उस गांव में जाती थी। उसके बाद 3-4 महीने होने को आए और फिर सुमित से रहा नहीं गया। वो पंखुड़िया रोज पेपर नैपकिन से खोलकर उसे देखता था, थोड़े से दिल को सहलाता था, और फिर वापस उसने 3-4 महीने के बाद एक हफ्ते तक उसी रूट पर आना और जाना छुट्टी लेकर किया कि अगर खुशबू मिल जाए, क्योंकि पूछा किसे जाए कि खुशबू कहाँ रहती है, ये तो खुशबू थी। बात को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आरजे दिलबर के साथ, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 पर।

पर ऐसा नहीं हुआ सुमित और खुशबू के बीच। 3-4 महीने के बाद में वापिस, दूसरे 2 महीने के बाद में, 1.5 महीना शायद हुआ होगा, और वापिस सुमित ट्राई करता है, नहीं मिलती है खुशबू। खुशबू की ओर से क्या होता है ये तो पता ही नहीं था। ऐसे ही ऐसे 1.5 साल निकल गया। सुमित के पास बहुत रिश्ते आए। सुमित बताता है कि पर मैं कैसे मान लूँ कि खुशबू मेरे से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मुझे अब एहसास था कि मेरा दिल तो वहाँ पर छूट गया है, मुझे उसे वापस लाना है। 1.5 साल बाद वापस, तब उसके जहन में आया कि मैंने ये क्यों नहीं किया कि उसी गांव में जाकर वहाँ के लोगों को पूछा नहीं कि वो कौन थी, कहाँ थी, कैसे थी, मुझे उससे मिलना है। और 1.5 साल बाद ये बात सुमित को उसकी छोटी बहन बताती है कि भैया आपकी स्टोरी में मुझे लगता है कि आपको उस गांव में जाना चाहिए, वहां पे जाके आप रोज पूछते, या फिर वहां पे 1-2 दिन रुक जाइए, या फिर उसी दिन आप सुबह से शाम तक पूछिए, कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई स्कूल तो बताएंगे, 1.5 साल बाद भी लोग तो वहां पे होंगे, और ऐसा थोड़ी है कि उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया होगा, तो अभी 6 महीने पहले तक भी अगर वो काम कर रही है तो वहां के लोग खुशबू दीदी को जानते होंगे, आप उन्हें ले आइए, मुझे दीदी ने उसको अपनी भाभी बनाना है। छोटी सी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती अपनी बहन ने जब ये बात उसको कही, तब सुमित के जहन में आया कि सच में यही सही वक्त है, और वो दूसरे दिन सुबह में छुट्टी लेकर पहुंच गया उस गांव में। वहां पर आज भी वो ककड़ी बेचने वाली आंटी बैठी थी, वो उसे देखकर पहचान गई और उसने बोला कि अरे बाबू आप वही हो ना, आप 1.5 साल पहले यहां से हमारी खुशबू दीदी को बिठा के लेके गए थे, फिर आप कभी आए ही नहीं, आप ऐसा क्यों किए? अब सुमित को लगा कि ये क्या है, मैं यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आंटी भी मेरे लिए, मतलब ये बूढ़ी औरत मेरे लिए यहाँ पे राह तक रही है। वो कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ पे कॉर्नर पे एक और बंदा बैठा हुआ था, ऑटो वाला, वो तुरंत आया और बोला अरे साहब आप कितनी देर के बाद आए हैं, चलिए चलिए आपके लिए तो पूरे सारा हमारा ऑटो वाला जो एसोसिएशन है यहाँ पर बैठा रहता है, क्योंकि खुशबू दीदी ने हमारे गांव की, हमारे बच्चों की सीरत बदल दी है, वो तो यहीं पे आके बस गई है, दूसरे दिन से आने के बाद वो यहीं पे रुकी है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि किसी ना किसी दिन आप यहाँ पे आओगे, आपका इंतजार तो बड़ा लंबा रहा, क्या बाबू आपने शादी तो नहीं कर ली ना? अब इसी बात पर सुमित आंखों से आंसू आने लगे। वो एक गुजराती में बहुत ही प्यारी मेरी गजल है, जिसकी 2 पंक्तियां मैं हर बार किसी मौके पर जगह मिलती है तो मैं बताता हूं। जे आंसू खोऊ छु एनो मने अवेज मळे, के हूं रड़ू तो तुम्हारा नयन मां भेज मळे। शायद खुशबू ने इसी कविता को, इसी गजल को अपनी बना लिया था कि मैंने आंसू खोने कि शुरुआत की है तो मैं खोऊंगी, पर इस आंसू का बदला मुझे मिलना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में भी वो प्यार छलकना चाहिए। और उस दिन सुमित वहां पे था, ऑटो धूल उड़ाती हुई सीधी निकलकर सामने कान्हा जी वाला मंदिर वाला चौक था, उसके एग्जैक्टली सामने एक पुरोहित जी का मकान था, उसकी कोने में एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर 3-4 गुलाब के पौधे थे, और सुमित ने अपनी पॉकेट से वो रुमाल निकाला, पेपर रुमाल जिसको उसने अपने कॉटन रुमाल में रखा हुआ था, उसमें कुछ पंखुड़ियाँ थी, वो खोली और वो देखते रहा। वो पंखुड़ियों की खुशबू थी या फिर वो पौधे जो लगे हुए थे उसके गुलाब की, या फिर उस कमरे में आधी खुली हुई खिड़की से आ रही खुशबू थी, सारी खुशबू दिल को रोमांचित कर रही थी। और जो ऑटो वाला बाबू आया था उसने चिल्ला के बोला, खुशबू दीदी आज आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं जा रहा हूं कान्हा जी के मंदिर भोग चढ़ाने के लिए। तुरंत दरवाजा खुला, खुशबू वहां पर खड़ी थी। 1.5 साल कोई बहुत इंतजार देखा जाए तो समय के तौर पे नहीं था, पर हर लम्हा हर क्षण किसी की याद में अगर हमने गुजारनी पड़े तो कैसा लगता है, एक पूरी उम्र की कैद की तरह। ऐसा ही था, थोड़ा सा चेहरा सिकुड़ तो गया था, पर आज भी वो हंसी तो ऐसा लगा कि सारे खिलखिलाहट और चहचहाट

पूरे वातावरण में फैल गई। सुमित आगे जाके खड़ा हुआ, अपने घुटनों पर बैठ गया, खुशबू के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूमा और कहा, खुशबू सच में ये सही वक्त आने में देर हो गई, बहुत इंतजार किया, पर मैं सही में तुमसे प्यार करता हूं। और उस वक्त बहार, क्योंकि ऑटो वाले को इस

साक्षी थे, वो कहते हैं ना कि वो उसके गवाह थे। बात को आगे बढ़ाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
1: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो तारीख 14-23 ઓગસ્ટ સવારે 11-10 વાગે રાખી મેળો બ્રહ્મર્ષિ હોલ જહાનારા બાગની પાસે પાલનપુર।

पक्का पालनपुरी न्यू ओला किटले ट्यून रहे मस्त रहे सामल दूर रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।